0: देखो देखो
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है।
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंटिनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: मेरे नाल ता कुछ खेड़ता ही नहीं, सब खोल दी लंग चंदे ने।
3: वादवा प्रोडक्शंस अते पेनोरमा स्टूडियोज पेश करते हैं नवी पंजाबी फिल्म बंद अखां नाल किसे अपने नू वेखण दी कहानी कणकां दे ओले।
4: साडा रब वसदा ए कणकां दे ओले।
3: स्टारिंग गुरप्रीत गुग्गी, तानिया, किश्तू के अते होर कई साथी कलाकार।
2: हुण दस्सो मैनू कणकां दे ओले कौन।
3: रिलीजिंग ऑन 31 जुलाई।
2: दस्सो।

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया,
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-86655 और विजिट tireforce.com.au।
4: इश्क कदे धर्म, जात जां सरहद्दां वेख के नहीं हुंदा।
5: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है?
4: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
6: बागी ते आशिक हद्दां सरहद्दां टप ही आउंदे ने।
4: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्क नामा।
7: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
4: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्क नामा।
0: सोना चाहिदा,
8: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
9: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
10: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
9: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट, सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट, डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
10: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
11: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
10: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
11: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
12: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
13: Wow!
8: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
13: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
14: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
15: हां जी रेडियो।

ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।

0: AM 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जो स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02 9063 1618 और पैरामेटा सिडनी अधि न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर

0: insurance brokers. Apni insurance thi har load le. Yaad rakho, bas Amrinder Gidda. Call 0491-999-555.
1: Gidda Insurance.
0: Sharta lagu.
2: Mere naal ta koi khelda hi nahi. Sab khol di lang jande ne.
3: Vadva Productions ate Panorama Studios pesh karde han navi Punjabi film Band Akhan Naal Kise Apne Nu Vekhan Di Kahani Kanakan De Ole
4: Sada Rabb Vasda Ye Kanakan De Ole Di
3: Starring Gurpreet Guggi Tania Kishtu K ate hor kai saathi kalakar
2: Hun dass mainu Kanakan De Ole kaun
3: Releasing on 31st July
2: Dasso
0: किचन का स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनालिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
5: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
6: जुगाड़ नहीं ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वदिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
7: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
6: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर Eight Grace Way, Raven Hall.
8: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
0: सोना चाहिदा
9: भरोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
10: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा
11: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा ते तू किस तरह टपा है
10: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने
12: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने
10: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा
13: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी
10: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू फिल्म इश्कनामा
0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
14: ओ पाजी एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने
15: हुन टेंशन छड़ो जी गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान बिजली दा बिल घट टेंशन भी घट
14: फिर लवाइए किथों
15: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते
16: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
17: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
16: ओ हुन
9: टेंशन नहीं, हुन डेंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना जूलर स्टोर खुल गया, ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना जूलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
16: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reya hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options we available. Aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo, vehicle experts Tim Forbes ya Corey Nal, Radio Hanji re hawale nal pao, 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
1: हाँ जी हाँ जी।

0: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252।
2: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनु भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
5: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
6: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
1: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
6: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
0: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
7: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिनों विच ही सोल्ड आउट हो चुका है, हुण दूजा शो 19 अगस्त नू रोड लेवर एरिना विच। ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लई विजिट करो livenation.com.au। गीता दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ते। ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए कित्थों?
2: सन करंट वालिया कोलों 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-01-246 ते।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हॉल।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

लाली नू राख बना के आखरी काम एक कर दे हो सजना, मेनू ले जा कुजे विच पाके, मेनू ले जा कुजे विच पाके।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।

अकाल मूर्त अजूनी सैपं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सोचै सोच न होवी जे सोची लहवार, चुपै चुप न होवी जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सह सियान पालक होए ता एक न चले नाल। किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटे पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्म

कौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया दिन सूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर जी

कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं ना ही कोई, विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती जे होवे ले कुरान, वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान। हितवार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोई, जां करता सिर ठीक हो साजे, आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सलाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आख है, एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै, नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है। पाताला पाताल लख आकाशा आकाश, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक वात, सैंस अठारा कहन कतेबा, असलू एक तात। लेखा होए ता लिखी है, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप। साला ही साला, एती सुरत न पाईया, नदियां अत्ते वाह।

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। केवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंग

केते मूर्ख खाई खाए केतिया दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए और आख न सके कोए जे को खाए आखन पाए ओ जाने

एक ओंकार सतगुर प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है।

अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ति बभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोकमाता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग।

ंग नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्व प्रनासी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्ध करदा अदो उर्ध अर्दंग अगग उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोच पालंग सदा सर्वदा सत दाता दयारंग अछेती अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्तताम तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ते निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साये नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दिशंग नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पर उदार मूर्त अजोन आद से देश अर न पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तत्र दिशा विशा हो फैलो न राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मान ताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेयन पे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

निरकाम आद दुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निरनामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये।

गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ धर्म अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनाद भूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो भांग भंगे अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जती के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि बरन्यावसीत नन जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंतकुणा के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे पूत पविख भवान के पुपत कौन कने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरन दुबा सुसाज सनह दुर

श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की धार बछैया तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनंद निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सबै अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वमर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे जम्फाज

0: नहात फिरयो लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सा पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सभी ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो संकर्या कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हर।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

सन्मान अते सत्कार योग सतगुरु गरीब निवास अंतर जामी सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप जी जितने भी माई पाई गुरमुख प्यारे सत संगी दूरों नेड़ेओं चल करके सोडी सुल्तान धन पिता श्री गुरु रामदास साहेब महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे नतमस्तक होने वास्ते अते गुरदेव गुरु रामदास साहेब महाराज जी दे पावन पवित्र सरोवर दे इशनान करन दे लई बड़ी शरदा भावना दे संजोग ते एकत्र होए हो अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी ने प्रकाशवान हो करके जिथे सानू तमाम संगता नू सुंदर दर्शन दीदारे बख्शिश करके निहाल कीता उथे समुची ही मानवता दी कल्याण वास्ते सतगुरु जी ने पावन श्री मुख वाक हुक्मनामा साहिब दी सानू बख्शिश कीती है। सतगुरु पातशाह दे दरबार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो आए पावन श्री मुख वाक दी कथा विचार आपा रोजाना ही गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे एकत्र हो करके श्रवण करदे हां। अज दा जो श्री मुख वाक सतगुरु जी ने सानू बख्शिश कीता है आओ कुछ समय वास्ते अपनिया मन विरतियां नू करिए एकागर। धन श्री गुरु अर्जन देव साहेब महाराज जी दे पावन पवित्र चरणा कवलां दा ध्यान रख करके गुरु

गोबिंद गुण गावन लागे। भाई असी ते जेड़ा गो पृथ्वी दी बिंद पालना करन वाला परमात्मा गो वेदा करके बिंद जानने योग धार्मिक ग्रंथा द्वारा परमात्मा दा स्वरूप जानिया जांदा। ऐसे गोविंद अकाल पुरख परमात्मा दे गुणा नूं गावन दे विच लागे लग गए हां। जे कोई बंदा कहे भी परमात्मा दे गुण केड़े नी, असी भी गुणे ने। मूल मंत्र दे अंदर सारे गुण ही गुरु नानक साहिब ने परमात्मा दे रखे ने। एक ओंकार मूल परमात्मा है, सत सच्चा है, ये गुण है परमात्मा दा। गुर चेतन है, ते इस प्रकार दे नाल जिहड़ा सत सच्चा नाम प्रसिद्ध है, करता बनाउण वाला पुरख पूरिया होया सारियां विच, इस समष्टि गुणा दा जिक्र मूल मंत्र विच कर दिता। ऐसे परमात्मा दे जिहड़े गुण हन उन्हां नूं गाउण दे विच असी लग गए हां।

नवा कार्ज अपना आरंभ करता है, बच्चा ही ले लो कोई, वो विद्या पढ़नी शुरू करता है, वो मां बाप नू अध्यापक टीचरां तो पुछदा भी मैनू इहदा फल की मिलेगा जे मैं विद्या पढ़ांगा। मां बाप ते अध्यापक दसदे भी पुत्र इहदे नाल उच्ची तों डिग्री प्राप्त करके चंगे अहुदे दे उत्ते पहुंच जावेंगा, जिंदगी दे सुख आनंद तैनू प्राप्त होणगे। जिमीदार वीर खेत विच जदों बीज बीजदा पहला सोचदा भी इहदा फल की मैनू मिलेगा, किन्ना झाड़ होवेगा फसल दा, किन्ना नफा होवेगा, मेरा कर्जा किवें लथेगा, ये सारा कुछ सोचदा दिमाग विच। कोई भी काम है दुनिया दा बंदा करन लग्या भी वारी सोचेगा भी इहदा लाभ की मिलेगा। जिहड़े परमात्मा वाहिगुरु गोबिंद दे गुणा नूं गाउण लगदे ने वह भी सोचते ने जे परमात्मा का सिमरन करांगे की मिलेगा, वाहिगुरु की बंदगी करके की प्राप्त होवेगा। गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहिंदे तैनू प्राप्त की होना हर रंग अन्न दिन जागे, एक ता तेरे अंदर हरी परमात्मा वाहिगुरु का रंग प्रेम पैदा हो जाएगा। जेड़ा ए प्रेम है, प्रेम ना बाड़ी उपजता, प्रेम ना हाट बकाए, राणा राजा जो चहे सिर दीजे प्रेम ले जाए। ए सिर दे बदले जेड़ा प्रेम प्राप्त हुंदा है, प्रेम दी अवस्था किन्नी को उची है। कलगी तर सतगुरु पातशाह कहिंदे साच कहो सुन लेहो सब है, जिन प्रेम की उते नहीं प्रा पायो। परमात्मा वाहिगुरु की प्राप्ति सच्चे प्रेम नाल हो जाती है। एक तेरे अंदर हरी परमात्मा का रंग जेड़ा प्रेम पैदा होवेगा, ते फिर दूजा तेनू की लाभ मिलना अन्न दिन जागे। तो रात दिन ही जागृत अवस्था दे विच ज्ञान दे विच जागदा रहेगा। बंदा कहे भी असी जागदे हां, नहीं असी परमादी नींद में सुते पए हां। अविद्या दी रात पई होई, भरम दा हनेरा पिया होया, चाहे दोवे नेत्र साडे खुले ने ते अंदरले मन बुद्धि रूप नेत्र विचार दी जोत तो बिना ओ खाली पए ने, ते बंदा किथे जागदा है। इन्हां नेत्रां दी गल करिए, इहदे नाल ते नेत्रां दीआं पलकां नहीं दिसदीआं, बंदे नूं अपना मस्तक मत्था नहीं दिसदा, सिर नहीं दिसदा, कंड पिठ नहीं दिसदी है, ते बाकी परमात्मा नूं किवें वेख लवेगा। नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी दिसंदो मां पेरी, ओ नेत्र होर ने मन बुद्धि रूप नेत्रां द्वारा परमात्मा वाहिगुरु नूं अनुभव कीता जा सकदा। सतगुरु जी कहिंदे जे परमात्मा गोबिंद दे गुणा नूं

0: सुन श्रवण बाणी इस तरह कन्ना दे नाल तों शरदा विश्वास रूपी कन्ना नाल गुरु साहिब दी बाणी नूं सुनिया कर। जदों बाणी सुनेगा तैनूं की मिलेगा सहज जानी उस परमात्मा वाहिगुरु दे स्वरूप नूं सहज निर जतन ही जानी तू जान लवेगा। लखां जतन करन दे बावजूद भी जिहड़ा स्वरूप समझ विच नहीं आउंदा बाणी नूं सुनना शुरू कर दे, क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने जपजी साहिब दी बाणी विच पहला चार पौड़ियां सुन दियां लिखियां ने, फिर मनन दियां आउंदियां, फिर अगे नदियासन दी अवस्था आउंदी है। सब तों पहला सुनना है गुरसिख ने। कन्ना नाल जदों बाणी नूं सुनेगा सहज निर जतन ही परमात्मा दे स्वरूप नूं जानी जान लवेगा। सहज जेड़ी ऐसी अवस्था है उस नूं भी बाणी दे द्वारा जान लईदा।
1: हर नाम जप वड पागै,
0: बाणी नूं सुन के सहज परमात्मा दे स्वरूप नूं जान करके फिर कोई वड्डियां भागां वाला हरी परमात्मा दे नाम नूं जप जपदा है। उहदे बहुत वड्डे भाग हुंदे जिहड़ा परमात्मा दा नाम जपदा, जां नाम जपदिआं जपदिआं फल की मिलदा गुरसिख नूं, निशानी की हुंदी नाम जपण वाले दी। वड्ड भागै उहदे अंदरों वड्डा पुणा हंकार भागै भज जांदा। जिन्ना बाणी पढ़ेगा, जिन्ना अभ्यास करेगा, सिमरन करेगा, उन्नी को निर्माणता अंदर आ जांदी है। जिवें किसे दरख्त नूं जिन्ना उहनूं फल लगदा उन्ना ही झुक जांदा फल दे नाल। जिन्ना किसे ने सिमरन कीता, जिन्ना बाणी दा अभ्यास कीता, उन्नी निर्माणता उहदे जीवन विचों दिसदी है। हर नाम जप वड भागै, ऐसे परमात्मा दे नाम नूं, हरी दे नाम नूं वड्डियां भागा।

यो हिरदा परमात्मा वाहिगुरु ने सानू दिता ए भी प्रभु परमात्मा दे आगे परमेश्वर अगे रख दिता दिता परमात्मा वाहिगुरु दा होया ते पेंड जेड़ा ए शरीर ए किसने दिता ए भी परमात्मा दी दात है शरीर भी परमात्मा अगे सेवा सिमरन दे विच रख दिता जीव अपना हिरदा भी शरदा भावना दे संजोगत करके ए भी परमात्मा नू अर्पित कर दिता है तुसी अपना हिरदा भी गुरु नू परमात्मा नू भेटा कर दियो पेंड शरीर भी गुरु

उपदेश धारण करके मंगल जिहड़ा खुशियां देण वाला परमात्मा वाहिगुरु है उस हरि दा जस जिहड़ा मैं गावा गौणा करदा हां। सच्चा अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु मंगल खुशियां दा दाता है उस हरि दे

0: पूर्वक गुरु अर्जन देव साहिब महाराज उचारण करदे गुरु नानक साहिब दे नाम दी मोहर छाप ला के हे अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी साडे ते अपनी दया दृष्टि धारण करो।
1: सदा हर गुण गावा
0: मैं सदा वास्ते सदा दे विच 24 घंटे आ जांदे ने दिन राती आराधो प्यारे निमख ना कीजे ढीला दिन रात

0: ध्याय ध्यान किया है ध्याता ध्यान धी द्वारा जेडे ध्यादे ने उन्हां नूं फल की मिलता सब फल पाए एक फल की गल नहीं की सतगुरु कहिंदे सब सारे फल पा लैंदे ने सारे फल केड़े ने धर्म अर्थ काम ते मोख चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे ये जेडे चारे पदार्थ ने यह फल रूप हन ये पाए प्राप्त कर लैंदे ने ते धर्म ते जेड़ा साध संगत की मोख है ये परमार्थ दे फल हन ये भी मिल जांदे ने ते इसे प्रकार जेड़ा अर्थ ते काम ये दुनियावी पदार्थ ने ये भी मिल जांदे सारे जिन्हें फल हन हरी दे चरणा दा ध्यान रखण दे नाल जीव पा लैंदा
1: मिटे आवण जाना
0: फिर जिहड़ा जन्म धारण करके आना है दुनिया विच ते मर करके जाना सी ये आना जाना भी मिट जांदा आना जाना सारा

0: पूर्वक बचन उचार दे गुरु अर्जन साहेब महाराज गुरु नानक साहेब दे नाम दी मोहर ला करके के गौर भरम खोया भाई साढ़े उपर ते गुरु नानक साहेब ने किरपा की गुरु अंगद साहब जी त्रोठे ने गुरु अमरदास जी मेहरबान हो गए गुरु रामदास पिता जी ने महान बख्शिशा कीतिया ने की बख्शिश कर दिती पूरिया सतगुरा ने अंदरों सारा ही भरम साडा खो दिता गुआच गया गुरु ने भरम जेड़ा सी खत्म कर दिता
1: देखा तत सोई
0: ये सारी मेरे समर्थ गुरु दी कृपा है आज जिधर भी देखा देख दे हां तत सोई उधर ही सोई परमात्मा वाहिगुरु दा रूप ही दिसदा है जतर जतर मनो जाती जिधर जिधर मन दी वृत्ति जाती जांदी है ततर ततर ब्रह्म दृष्टाती उधर उधर ब्रह्म परमात्मा ही दिसदा है ऐसी कृपा गुरु ने कर दी भरम चुक दिता।

जीव तो भज भजन करिया कर, सदा वास्ते परमात्मा दा भजन कर। जे भजन करेगा परमात्मा वाहिगुरु जी दा, महान तेरे ते बख्शिशा होणगीआं, तैनू भी ए आनंद प्राप्त होवेगा। गुरु साहिब दी कृपा दा तो

0: वैराग रूपी सूरज आ करके प्रगट हो गया। रस सुख है अंदरों सारे बकारा दे विषया दे जड़े ने यह रस नुख है सोख लेंदा ते मरिया धुख है। फिर उथे जड़ी बुद्धि रूप धरती ओ धुख है शांके दे विच हो करके मरन किनारे चली जांदी। बार बार सोचती है भी कल्ले बराग करके मैं परमात्मा नू मिल जावांगी ते जां होर भी मैनू साधन करने पैणगे, क्योंकि होर जड़े साधन बैराग विवेक खट शांति मोख इच्छा श्रवण मनन निध्यासन तत तवंग दा सुशोधन यह सारे साधन करने पैंदे जीव नू। इउं जिहड़ी जीव दी बुद्धि रूप धरती है यह शंके दे अंदर हो करके मरदी है, बड़े दुखां नू सहारना करदी है।
1: सुकिरत नहारे
0: परंतु फिर बुद्धि रूप धरती अपने अंदरों किरत की जिहड़े शुभ गुणा नू पैदा करन वाले ये काम ने उन्हां वलों हारदी नहीं। वो चंगे सत

0: ऐसे वैराग रूपी सूरज का रथ फिर जाता, वैराग एक पासे हो जाता ते उहदे नाल दूसरा विवेक अंदर आ जाता है ते छाया धन तक उदो फिर जेड़ा जग्यासु है किसी महापुरख दी किसी गुरमुख प्यारे दी संगत रूपी शान जीव रूप इस्त्री लभदी फिरदी है।
1: पीट लवै मांज बारे
0: जेड़ा सिख दा हिरदा रूपी जंगल है इहदे विच टींड कहिए बींडियां दी न्याई जेड़े शुभ गुण हन ए बड़ियां सुंदर अंदरों आवाजां कढ़दे ने शुभ गुण जेड़े आवाज

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। सावन का महीना आरंभ हो चुका है और सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, किंतु शास्त्रों के अनुसार यह महीना माता दुर्गा के स्वरूप माता पार्वती की कठोर तपस्या और उनकी अटूट भक्ति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी कारण सावन में शिव के साथ साथ माता गौरी और दुर्गा की पूजा का भी विशेष महत्व है। आज हम माता पार्वती के तप और शक्ति का करने वाले हैं श्रवण के माध्यम से पुण्य दर्शन, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ, तो शिव पुराण रुद्र संहिता और पार्वती खंड के अनुसार पूर्व जन्म में माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन ना कर पाने के कारण योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगले जन्म में वे हिमालय हिमवान के घर माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बचपन से ही उनका संकल्प था कि वे भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शिव गहन समाधि में लीन हैं, तब उन्होंने घोर वन में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि वर्षा ऋतु अर्थात सावन के दिनों में भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। तेज वर्षा, ठंडी हवाएं और कठिन परिस्थितियां भी उनके संकल्प को डिगा ना सकी। उनकी इस अटूट भक्ति और संपूर्ण समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी कारण हमारे यहाँ आज भी सावन में अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए माता गौरी और भगवान शिव का पूजन करती हैं। सावन में माता दुर्गा की पूजा का क्या महत्व है, बताता हूँ थोड़ी देर में। मैं यूं गया यूं आया।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दास। माता पार्वती ही शक्ति का स्वरूपा माता दुर्गा है। सावन में शिव पूजा के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा, गौरी पूजन, जप अत्यंत शुभ माना गया है। इससे परिवार में सुख, शांति, साहस, आरोग्य और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। आज हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भगवान शिव और माता शक्ति कभी अलग नहीं हैं। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव स्वयं कोई कार्य नहीं करते। शक्ति ही उन्हें सृष्टि के संचालन की सामर्थ्य प्रदान करती है। इसीलिए जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां शिव अवश्य है। इसीलिए सावन का महीना केवल शिव का नहीं बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का भी प्रतीक है। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाली हरियाली तीज का संबंध भी माता पार्वती से है। मान्यता है कि इसी दिन उनकी तपस्या सफल हुई थी और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियां माता गौरी का श्रृंगार कर उनका पूजा करती हैं और कन्याएं उत्तम जीवन साथी की कामना करती हैं। माता पार्वती की सावन की तपस्या हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और दृढ़ संकल्प से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सावन केवल भगवान शिव की आराधना का महीना नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति, संयम और समर्पण का पर्व है। जब शिव और शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है तब जीवन में आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार का कल्याण होता है। तो बोलिए मेरे साथ जय माता दी, हर हर महादेव। और आज के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास। नमस्कार।

0: major and minor accidental lifetime warranty naal. Work and paint. Free loan car di service mildi hai. All private and insurance authorized kaam te. Free legal advice lai call karo. 0383857748 te. Sing Smash Repair. 8 Grace Way, Raven Hall.
1: ਚਲਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੱਡੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੋਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ ਕਾਲ 0390866655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au
2: Wow! तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
1: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रिया है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
1: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है।
0: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
2: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
0: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
3: रांझे दिते 12 साल ते मैं दिती आ जिंदगी।
0: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
6: Attention travelers, the upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
7: बलजीत, व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
8: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
7: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
9: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों। याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।